0: आज बहुत मुश्किल है अकेला लौट के घर को जाना, लौट के घर को जाना। मेरे दिल का कमरा खाली है,
1: मेरे